0: Sanjana! Sanjana!
1: I'm sorry. मैंने आपको पहचाना नहीं.
0: तेरे लबों पे इनकार है, मेरे लबों पे इकरार है. हाँ यही तो है सब निशानियां.